0: सतगुरु जी वचन करते ने भाई ये धन नाल नहीं जाता, इत्थे ही रह जांदा है, संबंधियां ने सांभ लैणा है, किसे दा ए धन अंतकाल मित्र नहीं कहा जांदा।
1: जित सिर चोटा खाए,
0: जिस धन नूं इकट्ठा करन वास्ते जीव पाप कर्म करदा ना, मंद कर्म करदा ना, चोरियां चकारियां करदा ना, हट पट्टन बिज मंदर भन्ना कर चोरी घर आवे, अगो पिछे अगो देखे पिछो देखे, तुझते कहा छपावे, वाहिगुरु जी दे दर ते लेखा हुंदा ना, फिर चोरियां चकारियां करने वालियां दे सिर दे उपर जमा दियां चोटां पैंदियां ने। इसे प्रकार लोभ लालचा दे विच लग करके दूसरियां दा हक खा जाण वालियां दे सिर दे उपर चोटां पैंदियां हन जमा दियां।
1: जिनका पल्ला धन वसा,
0: महाराज दुनिया दे अंदर ते जिन्हां दे कोल बहुता धन हुंदा उन्हां नूं शाह जी, शाहूकार जी, सेठ जी, लाला जी इवें शब्दां दे नाल सन्मानित कीता जांदा है। आप जी बचन करदे हो, नाम धन तो बिना धन व्यर्थ है, नाम धन तो बिना धन सफला नहीं। साध संगत जी नुक्ता चेते रखण वाला है, नाम धन तो बिना जेडे अमृत नाम नू जपदे ने, दसवंध कढदे ने, धर्म दी किरत करदे, धन धर्म दे तरीके नाल कमाउंदे ते खर्चदे ने, उहनां दा ते सफला है। जेड़े नाम जपे तो बिना ठगियां ठोरियां मारदे ने, पाप कर्म करदे कमाउंदे ने, उहनां दा सफला नहीं है। इह नुक्ता याद रखना, इह नहीं जानना कि धन किसे दा भी सफला नहीं। जेड़े नाम दे रसीए ने जे छकदे ने ते छकिया सफला, वंडदे ने ते वंडिया सफला, दसवंध कढदे ने ते दसवंध सफला। सतगुरु जी वचन करना करदे ने भाई अमृत नाम रूपी धन तो बिना दुनियावी धन किसे दे पल्ले किन्ना भी होवे, कोई हजारा रोज कमाउंदा होवे, लखां कमाउंदा होवे, करोड़ा अरबा खरबा नित कमाउंदा होवे, इसे प्रकार बहुते धन नूं इकट्ठा भी करके सांभ के रख लिया होवे, पर जिन्हां दे पल्ले ये प्रतख धन नाम धन तो बिना वसदा है।
1: का पल्ला धन वसा तिनका नाओ फकीर,
0: भाई फिर उन्हां दा नाओ फकीर ही जानना करो। फकीर तो भाव हुंदा जिसदे पल्ले कुछ नहीं, जिसने कुछ सांभिया नहीं, जिहड़ा पल्लियों खाली है उस नूं फकीर कहा जांदा है। सतगुरु जी बचन करते ने भाई जे नाम का रसिया नहीं, नाम नहीं जपदा, दुनियावी धन किन्ना भी इकट्ठा कर लिया हो, उस नंग तड़ांगी जानो, पल्यो खाली ही किस जानना करो, क्योंकि बुद्धि रूपी पल्ले विच नाम नहीं है। महाराज फिर आप जी धन वाले किन्ना नू कहिंदे, सच्चे धनाड़ किन्ना नू कहिंदे हो, ते सतगुरु जी बचन करते ने भाई जिन्हां दे हिरदे दे विच तू वस है परमेश्वर जी, तुसीं वसदे हो, जिन्हां दे हिरदे विच आप जी दा अमृत नाम वसदा है उही उही सच्चे शाहूकार ने, उही उही धनाड़ ने। नाम धन जिस जन के पालै सोई साचा साहा, सच्चा शाहूकार सच्चा धनाड़ उसे नू जानो जिहड़ा जपदा है सतनाम
1: श्री
0: वाहिगुरु। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नाम, परवान गणी से ये आए सफल तिन्हां के काम। से धनवंत ओह धन वाले धनाड़ शाहूकार जानो, से धनवंत कुलवंत उच्ची कुल वाले जानो, पतवंत पत प्रतिष्ठा मान वड्याई वाले जानो, जेडे वाहिगुरु जी दे नाम नू जपदे ने। से धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त, उहनां नू जीवन मुक्ति दे आनंद मानने वाले जानो, जिस हिरदे भगवंत जिस दे हिरदे विच परमेश्वर वसदा है। सबना तो वड्डा उही होई है, धन वाला उही होई है, कुल वाला उही होई है, पत वाला उही हो जिहड़ा नाम जपदा है, ते जिहड़ा नाम तो हीणा उस नू कंगाल फकीर जानना करो। हजूर बचन करदे ने वाहिगुरु जी, जिन्हां दे हिरदे विच तुसीं नामी जी नाम रूप हो करके वसदे हो,
1: नर गुणी गहीर
0: ओ जिहड़े नर पुरख ने, ओ जिहड़े प्राणी ने ना, ओ शुभ गुणा दे समुंदर ही बन जांदे ने। भगत कबीर साहिब जी दी नियाई, नीच कुला जो लहरा पायो गुणी गहीरा, जे बटवाड़ा बाल्मीक जी नाम नू जपदे ने भगवान बाल्मीक जी कह करके पूजे गए। भाई इस प्रकार जेड़ा भी नाम नू जपदा है अथाह गुणा दा सागर बन जांदा है जीओ।
1: पहला
0: धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी नू किसे ने पुछया, महाराज बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए जतन करके, क्योंकि दुनिया की यह रीति देखी जाती है जिस दे कोल धन होवे ना उसे दा सन्मान लोक करते ने। सतगुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह जी ने फिर वचन किया है ना जी, धन धन धन का उपाखी है जाका जगत गुलाम, सब निरखत ताका फिरै नित चल कर तो सलाम।

जन्म जन्म पर मत फिरयो, मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निरपह पावहि बास। जतन बहुत मैं।

कहूँ रंग राजकुमार, कहूँ वेद व्यास अवतार। कई ब्रह्म वेद रटंत, कई सिख नाम उचरंत। वैराग कहूँ सन्यास, कहूँ फिरत रूप उदास। सब करम फोकट।

गिरे हरि गुफे हरि छते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि अद्वख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकरम हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि

ताप के सहित जो पिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन गायल सहत है। जाप के किए ते जो पिपायत अजाप देव पूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बास क्यों भुजंग न तरत है। कहू भयो मुंडिया सन्यासी कहू जोगी भयो कहू ब्रह्मचारी कहू जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रस करही मोई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही किसे व सब ही को गुण देवे एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहुरा मसीत सोई पूजाओ निवाज ओई मानस भय एक पय अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक

ते कनु ककोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केत नभ बीच अच पच को करेंगे भज, के तक व्रत अच हो पचाए।

तेज जिवा तेज मै अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूजा हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली बहारे भीतन लगाए हारे जापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न वामंगलेखं गवेखं गजौनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धरूपं नहि जान जाई कछु रूप रेखं कहां वासता को फिर कौन भेखं कहां नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं ना वह न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वेखं अवेखं गजूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे न

रूपे अखंड प्रतावाद अच्छा विभूते न जन्म न वर्णंग न वर्णंग न व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं स नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न वाते न सत्र न वित्र स भूते भविखे भवान य चित्रे नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं वै निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवं सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभात अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्त यथा वै विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न शर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाक्ये न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो।

देह दुखं गहु औखदी रोग के शोक सुखं गहु देव विद्या गहु दैत बानी गहु जा छगंद्रव किन्नर कहानी। कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं। कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की बेष्ट की रिष्ट पन्या। कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ भद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं। कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे। कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ।

भवानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र नीतं कहूँ शास्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा अक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रवाहो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज

त्वप्रसाद पाथड़ी छंद अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप दैना संतुट तेज अन्नकूट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंशिजात करता सदीव हर्ता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धरम जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाप नहीं बर्क ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साथ जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बर

कई तीरथ तीरथ भरमत सुभरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदपता सपायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र उचरत सुकरम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेद मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच्छ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तो दबतास पायतन अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तो दब देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग

जय जम पह गण जुअंग भय कम पह मेर पयाल भुवंग तपता पद सर्व जलेर तलंदन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूपा।

जमीन जमा जय रचयं सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्रसितं जय राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाक न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं से जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद भुजंग की ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत चुतंग जे तात न मात न व्रास तुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज से तज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूमि आकाश निवासितंग रज रोजे

मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेदन रंगजे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आदि शरंग जे वंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अनबंज प्रभा अनगंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप।

भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है नराग रंग रूप है नरोग राग रेख है अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म वेक है न तात मात जात है न बाद चिहन वर्ण है अदेक से गेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जिमी जमान के विजय सदीव करम भरम है अद्वैक है अवेक है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्वठोर में विषय खान मानी है न जंत्र मैं न तंत्र मैं न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत के बतावई न करम मैं न धर्म मैं न भरम मैं बताइय गंज आदि देव है कहो से कैसे पाइय जिमी जमान के विक समस्त एक ज्योत है।

न सिंह है, न सियार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चूर है, न साव है, न साको कुमार है, न ने है, न के है, न दे को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है।

न शीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न द्वी है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखिये बेअंत व्यंत व्यंत को करंत पाठ बेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए नजात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक के गृह

जाचकी नर मच्छ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व सबद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहियो विराज दे राज राज प्रवीन जाच गंधर्व देवता नो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णंके विके विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद बतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम स हंस वन नेत पूरण होत सोत सोत हटे सब दुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महागव कड़त गाड़ अनंत हार हार कहियो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेव कतेव देव दानो मूड मानो जछ न जान जेब भूत भव भवान।

रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवा पाल दीन बंध प्रवीण श्री सर्व को करतार वरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहना कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु मंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर

भूमका जले थले महमानिये जेहना अम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु कालक दीन दयाल मुकंद अघाव डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगतो सर्व जुगतो सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमका जले तले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रा

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत वे मुख चार आद अंत न मथ जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछरा पार सोद सोद थके महा

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा, कह जीतब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुखड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अव तरक दोहरा, को निंदा जस है कवन

आश्री बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्टो दंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुन सनमहक मथे दान प्रहारण नरक निवारण नदम उदारण उर्धे जय जय होशी महासुर मर्दन रम्मक बर्दन आदृते डावरू डवंके बरबवंके भुजा फरंके तेज वरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दंके अथति झमके फुंक फनंग जय जय होशी महासुर मर्दन रम्मक बर्दन दैत जिणंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन दजा परंकन पणि पुंगारण जोत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय होशी महासुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध ब्रह्माचन हृदय नराचन धनम प्रीते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी महासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय होशी महासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विप्र

प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्रगते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सीमा का सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट बिना

संकटी निवारण धम उदाहरण तेज प्रकर खंड तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध छे शुद्ध दा समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय उसी शास्त्र प्रकर खण आध अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच सरे कर कसा कुठा।

दानवी प्रकरण सर्वर वर्कण दुष्ट प्रदर्शन बितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय उसी में घासुर मर्दनाथ अनाथ अगाध प्रति दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदर्शन शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्ध लगा है दुख हरे अतुल प्रवाने संत जमाने गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद हंते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण सहस्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुग डुकी दमंके बाग बबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्प्रचंडन खंडे अखंडन का

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम कियो आप करते बसार जद बबूदन भय अनंत तव कहो जथामत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल आद भय अभूत अन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोक रहत जेहे नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच क्यों नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अक्षय स्वरूप करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चिहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्त पाल उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजदाग जल थल मही बंतन दुरंत जे नेत नेत निश दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख दहता उदार कई गोट इंद्र जय पान हार कई गोट रुद जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निश दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करें नित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन कौ दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके बद माबद वेद कते वेदोचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो कुरहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो फरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध द्वेक्षो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनातम अबाद छिद्र अक्षय है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अक्षय है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मावत ल है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक जलावत घाव तहु तन एक न लांघन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ पेट ही के पट बीच बचावे जय छुजंग सोदानव देव भेव तुभ सब ही कर द्यावे भूमा का अस्पताल रसादल जय छुजंग सब श्रण्यावे पाए सके नहीं बार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज तके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जय को मितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाए सके न भेद को खेद है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे याद अनाद अगाध अपेक अद्वैख जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट की ये स्नान दिए बोधान महाप्रत धारे देश फिर कर वेश तबोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुकारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मटैया।

ऐसा हम पापी तुम पाप खंडाना नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना तुम करहो भला वाहिगुरु जी तुसी भला करन वाले हो हम भलो ना जाने महाराज मैनू भलाई दा पता ही नहीं है तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो।